जब दिन के साए डरते हैं और शाम बेचारी आती है, दिल छुपके रोता है जब याद तुम्हारी आती है। जब याद तुम्हारी आती है दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ये रात के दिए बुझते नहीं और दिल में अगन लग जाती है।